आस की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: celebrating 36 years of excellence.
1: The greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio.
0: This is Sunrise with the latest news headlines. Next.
2: Sunrise Radio.
3: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
3: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
3: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
4: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में दो ब्रांचेस के साथ,
5: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल, सबसे सोना साडा सोना।
4: Wasim Jewelers.
6: At McDonald's, feeding the little ones just got easier with a Happy Meal for just $2.99 on the app. That's long journey stop-offs and movie night fees sorted. Just a little spend for some big smiles. Some fun, some food,

0: 1964 की फिल्म शर्मिला टैगोर बॉलीवुड डेब्यू, कश्मीर की कली रफी साहब की आवाज में ये गाना। नीलम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप कहती हैं शर्मिला अ बंगाली ब्यूटी एंड इंडियाज एल्विस प्रेस्ली शम्मी कपूर साहब। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट बिपाशा बासु वंस, डिस्क्राइबिंग हर एज द ओरिजिनल बंगाली बॉम्बशेल। आई वॉज इमीडिएटली टोल्ड ऑफ, सेइंग द ओरिजिनल बंगाली बॉम्बशेल इन बॉलीवुड, श्योरली दैट हैज टू बी शर्मिला टैगोर।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
1: शिकवे
0: वॉच सहर होने को है मंडे टू फ्राइडे 9 PM ऑन कलर्स टीवी। The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southhold Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southholdtravel.co.uk. Sunrise Radio पर इस घंटे का हमारा hit of the hour. You know, चांद मेरा दिल is proving to be a film, is proving to be a gift that keeps on giving. ये गाना अब तक कहाँ छिपा था? जुनैद अहमद की आवाज में, फिर अजनबी।

टेकन फ्रॉम द फिल्म चांद मेरा दिल, जुनैद अहमद, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, फिर अजनबी एक बार बनकर देखें, फिर अजनबी। दिस हैज शेड्स ऑफ इश्क निभावन दे, है ना।

Smash it if you got it right. A little bit tricky, wasn't it, eh? Got your hidden gem on the way for you in a few minutes. Stick around. तू करे ब्लो बाकी करे शाइन तू करे ग्लो जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लो बेबी लेट्स गो Right now, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ लक तेरा लीन बातें तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव

0: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
1: Ready to switch over to something a little bit more mellow? When you're ready to switch gears, switch to Sunrise Hits, the UK's smoothest Asian hits. Available on DAB nationwide, on the Sunrise Radio app, and on sunriseradio.com.